जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा।

लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानो, लील्योता है मधुर बल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम गाज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

जो मित्रों आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हो और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 बजे हैं और अब शुरू करने जा रहा हूँ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। और सर्वप्रथम मौसम की खबर पे चलते हैं, मगर उससे पहले बतला दूं नया महीना लग चुका, आज 2 तारीख मई सन 2026 है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका आज भीगा भीगा दिन है, लेकिन वैसे बहुत कुछ हो रहा है ब्रिजबन में और कई जगह पर फंक्शंस हो रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कॉमेडी शो हो रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। जहाँ भी जाएं, जिस हाल में भी जाएं, मालिक आपका साथ दे। और चले मौसमी दफ्तर ब्रिजबन ने निम्न खबर हमें प्रदान की है, जिसके अनुसार आज का मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में कहा गया कि हल्की बारिश होती रहेगी और ब्रिजबन में अधिक से अधिक तापमान 25 रहेगा, कम से कम 18, हवा का रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 6:13 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:15 सूर्य अस्त होगा। इप्सविच में मौसम यही है और 25 दिन में रात्रि को 15, हवा का रफ्तार 18, सनसाइन कोस्ट में 24 दिन में रात्रि को 20, हवा का रफ्तार 26 और गोल्ड कोस्ट में 24 दिन में रात्रि को 19, हवा का रफ्तार 23। फिजी द्वीप ले चलते हैं, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय अड्डे नांदी ले चलते हैं, जहां 6:23 पर सूर्य उदय हुआ है और 5:50 पर सूर्य अस्त होगा। आकाश पर घटा छाई हुई है, 29 रहेगा दिन में और रात्रि को घटकर 26 हो जाएगा, तो खास फर्क नहीं है। हवा का रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है। लंबा समय ज्यादातर धूप निकलेगी, 31 दिन में रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 13। सुबह में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, 27 यहाँ पर है दिन में, रात्रि को 23, हवा का रफ्तार भी 18 है। फिर ऑकलैंड न्यूजीलैंड ले चलते हैं, जहां पर धूप निकली हुई है, 18 दिन में रात्रि को 11, हवा का रफ्तार 11 और 7 बजे सूर्य उदय हुआ है, 5:30 अस्त होगा। वेलिंगटन में आकाश पर घटा छाई रहेगी, 14 दिन में रात्रि को 9, हवा का रफ्तार 31। मुंबई, नई दिल्ली, अमृतसर में धूप निकलेगी, 33 है मुंबई में दिन में, रात्रि को 29, हवा का रफ्तार 21 और नई दिल्ली में 37 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 11 विंड स्पीड, 544 सनराइज, 710 सनसेट। अमृतसर में 37 मैक्सिमम, 24 मिनिमम, 11 विंड स्पीड। तो ये था स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। मित्रों, शनिवार आया, शनिवार चला गया, फिर शनिवार आ चुकी है और आपका साथ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरा साथ 8:30 बजे तक रहेगा और उसके बाद निविया जी आ जाएंगी टॉप 10 लेकर। भीगा मौसम है, ऐसे लग रहा था, जानते हो, खासतौर से ऐसे मौसम में ऐसा वातावरण जो होता है, टीन का अगर रूफ हो, ठीक है, और आहिस्ते ऐसे बारिश पानी उस पर गिरे, उसके बूंद जो गिरे और थोड़ी थोड़ी आवाज आए और फिर हम खाट पर लेटे हुए आराम करें, तो कितना सुकून लगता है। लेकिन क्या करें, हम लोग हैं कुछ जिनको बहुत जल्द उठना पड़ता है और निकल कर अपने काम काज पर लग जाना पड़ता है। तो जो भी हाल है, मालिक की दया है, आप सब पर बनी रहे दया दृष्टि। अमला जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और चलें आगे बढ़ते हैं, हमेशा की तरह आज थोड़े अलग अलग गीत लेकर आया हूं मैं। तो चलो पहले चलते हैं सोनू निगम जी के साथ। हम फिल्म का नाम है कल हो ना हो, ये बड़े कमाल का पिक्चर था, इसके गीत बड़े अच्छे थे और जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा था और संगीत शंकर एहसान लॉय, एक इनका संगीत है और खूबसूरत आवाज है सोनू निगम जी का। कल हो ना हो का शीर्षक गीत आपके लिए, एक याद दिलाती है हमें कि हमारा आज का दिन कैसा है, कल क्या होगा मालिक जानता है, लेकिन ईमानदारी से सब कुछ करें, प्यार से करें और खूबसूरती से एक दूसरे से मिलें। तो चलो आगे बढ़ते हैं मजेदार गीत के साथ।

0: तो मित्रों, ये था कल होना होगा शीर्षक गीत जो भी आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं कि गीत आपको पसंद आया होगा। इसका खास मकसद यही था आपके लिए जो मैं बजाया हूं कि हमें याद दिलाती रहती है कि जीवन कैसा है, किस तरह से हमें जीवन को जीना चाहिए, ये सब बातें हैं। और अच्छा लगा सुनकर। और गीत के जो शब्द हैं जावेद अख्तर साहब ने कमाल के लिखे हैं। तो ये आदमी का जीवन में जो उसके अनुभव है, जो बीता कल है, उसको याद करते हुए लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, अपना जीवन को सुधार लेते हैं और आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, आदतें बदल देते हैं, ये सब होता है। तो और क्या कहूँ मैं, आगे भीगा मौसम के साथ हम चल रहे हैं मित्रों। ऑस्ट्रेलिया में यही हाल है, पानी रुकने का कुछ मानता भी नहीं है जी। चलो विज्ञापन के साथ बढ़े आगे।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: इस समय 19 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। और आपको बतलाना चाहता हूँ कि भाई कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिकली मालूम नहीं क्यों स्टेशन का बंद हो चुका था। और शायद आपने सुबह के बेला में थोड़ा मुश्किल का सामना किया होगा प्रोग्राम को सुनने में, अन्यथा अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। स्टूडियो का नंबर है 3279-1701। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो 0411-127-035 पर रابطہ कायम करें। कल मुलाकात हुई एक टैक्सी ड्राइवर से, और क्या वो सुन रहा था, रेडियो ब्रिस्बेन ही सुन रहा था टैक्सी में। तो बातें होने लगी तो बोलने लगे कि भैया, आपका आवाज़ में सुना हूँ, शादी भी कराते हो, देखा हूँ कई जगह। मेरा शुरुआत ऐसे ही होता है, कीर्तन से सुनते रहते हैं ब्रिस्बेनी को, और फिर दिन में आप लोगों का जो म्यूज़िक चलता है वो सुनते रहते हैं। एक आदत सी पड़ गई है, 5 बजे उठो, अपना पाठ करो, पाठ करने के बाद गड्डी में बैठो, निकल पड़ो सफ़र पे। तो चलो, वाहेगुरु जी की तरफ से आपको बहुत सारे प्यार आशीर्वाद मिले। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ आज अलग अलग गीत हैं, मैंने कहा आपसे। अब जो गीत बजाने जा रहा हूँ उसके रचयिता हैं गुलजार साहब। अनु मलिक जी का मचलता संगीत है। एक बार फिर सुनो निगम आ रहे हैं, मगर इस बार साधना सरगम जी के साथ।
5: खुश नसीब है मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब है, अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं

0: तो मित्रों, ये दूसरा गीत था और आगे बढ़ते हैं, चलें खबर की तरफ। खबर के बाद कुछ आज ऐसे ही गीत बजा रहे हैं आपके लिए, उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपको गाने अच्छे लगे होंगे।
1: हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना जावेद अली और मैं आ रहा हूँ 2 मई को ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम में फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ हम याद करेंगे रफी साहब के गोल्डन सॉन्ग्स और साथ ही साथ सुनेंगे मेरे भी वापस से सॉन्ग्स। ये एक ऐसी शाम होगी जो सिर्फ म्यूजिक नहीं, इमोशंस लेकर आएगी और आपके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिक नाइट के लिए तैयार हो जाइए 2 मई को। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय लीडर्स इंस्टीट्यूट, सो बुक योर टिकट्स नाउ। टिकट्स आर अवेलेबल एट starlinesentertainment.com। सो सी यू देयर।
0: जी मित्रों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें। इस बार जो गीत आ रहा है फिल्म कुश्ती का गाना है, खूबसूरत सा गीत है ये भी। पहली बार तौसीफ अख्तर जी की आवाज़ में सुनूंगा मैं, वैसे अनुराधा श्री राम जी भी इनके साथ दे रहे हैं, तो चले आगे बढ़ते हैं गीत के साथ।

0: जी मित्रों, फिल्म कुश्ती का गीत था जो आप सुन रहे थे और अच्छा लगा, कमाल का सीन है। तो आगे बढ़ें इस खबर के साथ।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
0: मित्रों आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ते हुए कुमार सानू जी आ रहे हैं 90s हिट्स को लेकर, और समीर साहब ने गीत को रचा है और संगीत आनंद मिलन जी का है। प्यारा सा गीत है, सुनते हैं।

जी मित्रों, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं, आप सुन रहे थे, और इस समय 6:55 होना चाहते हैं और हम आगे बढ़ते हुए चलें और आगे जा रहे हैं। एक और खूबसूरत सा गीत है, इसे विनोद राठौड़ साहब अदा कर रहे हैं, उसे बजाएंगे आपके लिए और फिर पुराने गीतों की दुनिया में लेकर चलेंगे आपको। तो आप रेडियो ब्रिजबानी, आपकी अपनी पहचान ही आप सुन रहे हैं, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से समरिन माइल रॉक्स ब्रिजबेन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। और चलें आगे बढ़ते हैं गीत के साथ, विनोद राठौड़ जी हैं, प्यारा सा गीत है। और उस पूछोगे भाई क्या, गोविंदा साहब पर्दे पर, इसीलिए मजेदार ये सीन है, आप सुनिए।

0: मधुबाला, अरे गजब कर डाला रे, अरे अजब कर डाला रे।
1: जी हाँ दोस्तों, इस गीत के साथ साथ स्टूडियो की घड़ी में 7 बजे हैं और आप प्रमाण के साथ हैं, संगीत सरगम नामक कार्यक्रम का लुफ्ट ले रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे आपके लिए कौन सा, यानी कि पुराने गीतों को। अब पुराने गीतों में अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं। तो एक बार फिर मौसम पर नजर डालते हैं। आज के मौसम की खबरों में अनुमान किया गया है कि साउथ ईस्ट क्वींसलैंड भीगा भीगा रहेगा, हल्की बारिश होती रहेगी, तो ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही रहेंगे, शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकलेंगे या फिर कुछ फंक्शंस हो रहे हैं वहाँ भी जाएंगे तो सर पर टोपी या कुछ ओढ़ लें और साथ में सर को ढाक लें, छतरी वगैरह लेकर चलें, बारिश होती रहेगी। और जहाँ जा रहे हैं पार्किंग वगैरह का ख्याल करके थोड़ा जल्दी निकल जाइएगा। और ये प्रसारण 1701 AM के माध्यम से 7 Mile Rocks ब्रिस्बन ऑस्ट्रेलिया से हम कर रहे हैं। और एक बात बोल दूँ आपसे, लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग रेडियो ब्रिस्बन सुन रहे हैं इस समय और आप घबरा जाओगे सुनकर कि कहाँ कहाँ से लोग सुन रहे हैं और कौन मीडियम से या माध्यम से, कोई स्टूडियो से सुन रहा है, आई मीन लाइव रेडियो घर से, कोई वेबसाइट पे जाता है क्या बोलते हैं ब्रिस्बन.com पर, और कुछ लोग अपने फ़ोन पर सुन रहे हैं ऐप डाउनलोड करके, और कुछ लोग के भाई पर्मनेंटली, एक बंदा कह रहा था कि गाड़ी में पर्मनेंटली यही चलता है, कोई आ गया फ़ोन आ गए तो ऑफ हो जाता है फिर बजने लगता रेडियो। तो यही है कमाल है, जिस तरह से आप मनोरंजन हासिल करना चाहते हैं कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। पुराने गीतों में अब हम आपको ले चलते हैं 1970, क्या साल था मित्रों, 1970, जब फिल्म बनी थी पगला कहीं का, शमी कपूर जी, आशा पारे, ख्यालन वगैरह मुख्य भूमिका में थे, प्रेम चोपड़ा साहब भी थे और इसके गाने बड़े अच्छे हैं और रोमांटिक भी हैं। तो चलें मोहम्मद रफ़ी जी के साथ शुरू करते हैं एक प्यारा सा गीत, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का, ये गीत के बोल हैं और ये मुझे कुछ याद दिलाता है। 1970 था साल जब मैंने सरकारी सिविल सेवन बना था 1970 में, और फिर करते आए, भाई क्या बात है, समय कैसे चला गया पता नहीं चला। यार दोस्त भी मिले, आज भी हैं जो हमारे बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, और इंटरिया भाई तो हैं हमारे साथ ही हैं हमेशा, रवि नायडू साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बीच और बहुत लोग हैं, किसका नाम लूँ मैं। तो चलो गीत का आनंद लेते हैं और जेम्स आपको और आपके पत्नी को भी याद कर रहे हैं इस गीत में, आनंद लीजिएगा।

जमित्रवासी हुई मैं जबीका, लोग कहें मुझे पगला कहीं का। बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान ही सुन रहे हूँ, मैं हूँ परमानंद संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए लता जी आ रहे हैं इस बार बहुत प्यारा सा गीत को लेकर, उनसे सुनते हैं इस गीत को, मुझे जब से मोहब्बत हो गई। ये फिल्म लाट साहब का है, बहुत लोगों को ये पिक्चर याद होगी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। इंटैया भाई गुड मॉर्निंग, राम राम। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लता जी के साथ ये गीत को लेकर हम आए हैं।

0: जी मित्रों, लता जी हैं गीत के साथ, और वैसे शमी कपूर साहब हैं हेमा मालिनी जी के साथ ये पिक्चर में। तो चलें अतुल जी का विज्ञापन सुनते हैं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: अब इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 13 मिनट हुए हैं 7:01। एक और गीत और इसके बाद हम राव जी को लेकर आएंगे। तो चलते हैं, इस गीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं और गीत के शब्द बड़े अहम हैं। जीवन के बारे में कुछ जिक्र कर रहे हैं। मनडे साहब हैं सुर में और बादल है फिल्म का नाम। बहुत पुराना पिक्चर है लेकिन आज भी इनका गीत अमर है। तो चलो सुनते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए।

0: जी हाँ, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। सुन रहे थे मन्ना डे जी के आवाज में, पदे पर संजीव कुमार साहब थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना पुराना गीत आज भी सुपरहिट है और कुछ जरूर हम सीख लिए होंगे इस शब्दों से कि किस तरह से हमें अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए और एक दूसरे किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राव जी। राव जी नमस्कार।
1: नमस्कार परमानंद जी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को सुन करके। अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमेशा हम एक दूसरे के मदद के लिए रहते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, रिश्तेदार में, पति पत्नी में, भाई बहन में, और गांव के साथी, पड़ोसी, आस पड़ोस के लोगों से भी हम कैसे रहें, यही शिक्षा इस गीत से मैंने लिया हूं। और लोग जैसे भी लेते हैं तो तारीफ तो है रेडियो ब्रिजबानी की, यदि वो मेहनत नहीं करते डायरेक्टर साहब तो आज इस अंग्रेज मुल्क में हम हिंदी का कुछ भी नहीं कर पाते। और रेडियो ब्रिजबानी एक ऐसा है जो 24 घंटा चल रही है और सुंदर सुंदर गीत चुनकर अनाउंसर लोग लाते हैं, ये बहुत मजा की बात होती है परमानंद जी।
0: जी
1: आज चलते हैं कुछ उस विषय पर जो मन की प्रकोप होती है। मन से हम क्या करते हैं, मन की दोस्तियां है शिक्षित और अशिक्षित। अशिक्षित मन अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता, शक्तियां मात्र रह जाती है, आदमी सोया का सोया रह जाता है, वह कभी जागता नहीं, वह कभी जागता ही नहीं। जागरण के बिना शक्ति का उपयोग ही नहीं हो सकता। जब मन एक निश्चित पद्धति से प्रशिक्षित हो जाता है तब वह आश्चर्य कार्य घटनाओं को घटित करने में सक्षम हो जाता है। जब मन एक निश्चित पद्धति से प्रशिक्षित हो जाता है तब वह आश्चर्य कार्य घटनाओं को घटित करने में सक्षम हो जाता है। मन की शिक्षित

0: आचरण बहुत ऊंचा भी नहीं होता, वे भी मानसिक शक्ति का जागरण कर लेते हैं, क्योंकि यह तो एक पद्धति का अभ्यास है, कोई भी इसे कर सकता है। शरीर की लाघवता को घटित किया जा सकता है, शरीर को हल्का बनाना पद्धति सापेक्ष है। आठ सिद्धियों में एक सिद्धि है अणिमा, इसके अभ्यास से शरीर हल्का हो जाता है। इतना लघु यानी इतना छोटा कि वह चाहे जहां टिक सकता है, ठहर सकता है। यह योग की एक प्रक्रिया है, किंतु यह भी कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। जितनी सिद्धियां है वे सब अध्यात्म से नीचे रह जाती है। ये सिद्धियां मानसिक शक्ति का जागरण और मांसपेशियों के समुचित व्यायाम के द्वारा उपलब्ध होती है। इसीलिए लोग हमेशा कसरत करते हैं और अपने आप को शरीर की देखभाल करते हैं। मन की शक्ति अभ्यास के द्वारा जागृत होती है। एक है अभ्यास और एक है अभ्यास की पद्धति। अभ्यास की पद्धति प्राप्त हो जाए और बार बार अभ्यास किया जाए तो उस दिशा में विकास हो जाता है। अभ्यास की हजारों पद्धतियां हैं जिनसे मन को शिक्षित किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति सब पद्धतियां साधे या संभव नहीं है। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं बिजली को जलाने और बुझाने की शक्ति प्राप्त करूं। उसने इस दिशा में अभ्यास प्रारंभ किया, संकल्प बढ़ा, कोशिश करते गए। वह दूर बैठा ही बिजली जलाने बुझाने में सफल हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ यंत्र था। इसको हम कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं दे सकते। यह केवल मानसिक शक्ति का एक प्रयोग मात्र है। अमुक धारा में मन का प्रवाह ले जाया गया, हम मन से क्या ना क्या कर पाते हैं, और वह सद गया। एक व्यक्ति ने प्रयोग किया कि मैं मन की शक्ति के द्वारा किसी को वरदान और किसी को शाप दूंगा, किसी पर अनुग्रह और किसी पर निग्रह करूंगा। उसी धारा में मन को प्रभावित किया और उसे वह शक्ति प्राप्त हो गई। उसमें वरदान देने की शक्ति भी आ गई और श्राप देने की शक्ति भी आ गई। मनुष्य कोशिश करता है, ये मानव शरीर जब जीव को मिल जाता है परमानंद जी, वो कोशिश करता है कि हम दिन प्रतिदिन आगे भी बढ़ते ही जाए। यही मन की शिक्षित लेकर के आज मैं आया हूँ आपके कार्यक्रम में। तो आज के लिए इतना ही, और अगले सप्ताह देखें क्या लाता हूँ मैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, और नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: एक याद आ गया कुछ नॉली स्ट्रीट सुबह का, जब भजन कीर्तन होते थे सत्संग के बाद, की मानस जन्म फिर से आना नहीं है बिना

0: गुरु ज्ञान पाना नहीं है, ये बोल थे कीर्तन के। चलो मिलते हैं जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद।
0: तो मित्रों ये थे राव जी और इनकी वाणी अच्छी लगी और हम आगे बढ़ते हैं, हम विज्ञापन बजाते हैं दो, फिर मजेदार गीतों को 90s से हट करता थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम।
2: Celebrate Mom this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mom this Mother's Day. Terms and conditions.
3: Bigger, better deal.
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
0: तो मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा रुख बदलते हैं, चलें जोड़ी नंबर वन का गीत है। सोनू निगम जी आ रहे हैं सुनिधि चौहान जी के साथ, तुम मस्त कुड़ी मैं भी मस्त मस्त मुंडा हूँ। क्या बात है, खाद छोड़ने वाली बात आ गई, सुनते हैं जी।

0: जी हाँ, मजेदार गीत था। और अब 28 मिनट रह गए हैं इस समय 8 बजने में, जन्मदिन के खबरों का समय आया है। और जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, बहुत सारी बधाइयां हम भेज रहे हैं आपको। और जिनकी शादी की सालगिरह, उनके लिए जोड़ी सदा सलामत रहे। और जिनका जन्मदिन आ रहा है भाई, एंजॉय दिस मोमेंट और परिवार के साथ, न तो फिर एक दिन आएगा सोचोगे कि हमने जो वक्त मिला था सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किए। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस विज्ञापन के साथ।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप कुछ मिले जुले गीतों का कार्यक्रम में शामिल हुए, कुछ नए गाने हैं। तो सुष्मिता सेन जी पर्दे पर गोविंदा जी के सामने, और गीत को अदा कर रहे हैं जसविंदर नरुला और सोनू निगम जी। एक लड़की चाहिए खास खास, सुनते हैं भाई क्या बात है, किस तरह की लड़की चाहिए।

0: जी मित्रों, मुझको एक हाई फाई लुगाई चाहिए, आप सुन रहे थे। और चले आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी। पंडित जी, सादर प्रणाम आपको, स्वागत है ब्रिजबानी पर।
1: शर्मा जी, आपको भी प्रणाम और सुनने वालों को नमस्कार। वैसे तो हम कहते हैं सुंदर सुबह है, सूर्य भगवान की दर्शन हो रही है और वर्षा भी हो रही है, जो कि बहुत दिनों से जरूरी था। तो चलो, ऊपर वाले की कृपा बनी है और आपका भी प्रोग्राम सुन रहे हैं परमा जी, और सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं, राव जी का भी कुछ विचार सुने। और जबकि कल हमारा जो बैसाख महीना ना कहते हैं, बैसाखी वाला महीना
0: जी,
1: वो खत्म हुआ है। तो आज से ज्येष्ठ मास का प्रतिपदा तिथि, पहला तिथि है कृष्ण पक्ष का। तो अंधेरिया रात आज से शुरू होता, कभी कभी बोलते हैं जब पक्ष बदलता है तो वर्षा के भी बदलाव होती है। तो देखते हैं ऊपर वाले की दया क्या बनती है। और बहुत कुछ देशभर में हो रहे हैं और श्री सनातन धर्म माहौल में भागवत कथा होने जा रहा है, और जहाँ जहाँ पर अभी भी कितने प्रोग्राम देशभर में आज कुछ हैं, कहीं पर कुछ शादी विवाह का भी रचना हो रहा है। इसी तरह से परमा जी सभी के लिए आशीर्वाद है और परमात्मा की कृपा आप पर बने पर और रेडियो ब्रिजबानी पर बने कि हम ऐसे सुनते रहे आपको और रेडियो के माध्यम से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी,
1: धन्यवाद आपको भी, फिर मिलते हैं।
0: अच्छा जी, धन्यवाद जी, नमस्कार पंडित जी। तो मित्रों, ये थे पंडित सुरेश चंद शर्मा जी, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें, जावेद जी आ रहे हैं ब्रिजबेन में, आज उनका शो है, तो ये खबर सुनते हैं।
2: एक शाम जहां सुर और जज्बात सीधा दिल तक पहुंचेंगे, द मच अवेटेड कॉन्सर्ट रफी और मैं, ये वही रात है जिसका सभी को था बेसब्री से इंतजार। जावेद अली लाइव अपने बैंड के साथ लेकर आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज एंड सोलफुल परफॉर्मेंसेज। के मशहूर सिंगर जावेद अली, जो इस रात को बना देंगे ट्रूली मैजिकल। कॉन्सर्ट होगा लाइव एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम, 16 रोवर स्ट्रीट, माउंट ग्रेविट, क्वींसलैंड 4122। लेजेंडरी मोहम्मद रफी साहब को एक खास ट्रिब्यूट और एनर्जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। अगर टिकट अभी तक नहीं ली है तो जल्दी लीजिए, क्योंकि शो है इसी सैटरडे 2 मई को ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम में। बाय योर टिकट्स नाउ एट www.staralliancentertainment.com। प्रेजेंटेड बाय लीडर्स इंस्टीट्यूट, पावर्ड बाय लीगल गुरु।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: और दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें, कुछ मजेदार गीत आप सुन रहे हैं, और अगला गीत भी बहुत प्यारा सा है, ये थोड़ा कॉमेडी से भरा हुआ है। कुमार सानू जी हैं अलका जी के साथ, और गीत के बोल हैं, खुला है मेरा पिंजरा वो मेरी।

मित्रों खुला है मेरा पिंजड़ा, वो मेरी मैना, आप सुन रहे थे। और इसी के साथ ही रेडियो ब्रिजवानी की घड़ी में लगभग 8:15 रह गए, यानी कि 7:45 बज रहे हैं। और याद दिला दें कि 7:45 के बाद 8 से 8:15 के बीच रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आप सुन सकेंगे। और इस समय आप परमानंद के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आगे गीत एक बजाने से पहले हमें एक सूचना प्राप्त हुआ है, वो हम रेडियो पर अब ये अंग्रेजी में लिखी तो मैं वही पढ़ता हूँ जो लिखा हुआ है। और इसको भेजने वाली हैं हिल्डा पेपा, वो कह रहे हैं स्टिल मिसिंग, प्लीज हेल्प मी फाइंड माय गर्ल मोली मिनी सोसेज डॉग, शी एस्केप्ड फ्रॉम द बैकयार्ड ऑन ट्यूसडे अराउंड डेम्पिया क्रेसेंट फॉरेस्ट लेक, शी विल बी वेरी स्केर्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट, डोंट चेज हर और ट्राई एंड कैच हर, पिन हर लोकेशन एंड प्लीज कॉल मी ऑन 0426-261695। ये नंबर मैं दोबारा आपको बतलाता हूँ, 0426-261695। और अगर आप इस डॉगी को पा लेते हैं और इस लेडी को फ़ोन करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा $500। तो याद रहे, दोबारा पढ़ता हूँ, स्टिल मिसिंग प्लीज हेल्प मी फाइंड माई गर्ल मोली मिनी सोसेज डॉग, शी एस्केप्ड फ्रॉम द बैकयार्ड on Tuesday around Dampier Crescent Forest Lake. She'll be very scared and stressed out. Don't chase her or try and catch her. Pin her location and please call me. Kisko bol call karna aap jante hain, Hilka ko. Aur phone number hai 0426-261695. And there'll be reward offered for safe return of $500. To ye tha hame ek khabar जो टेक्स्ट मैसेज द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें अंखियों से गोली मारें, सोनू निगम जसपिंदर नरूला इस गीत के साथ।

0: जी, आंखों से गोले मारे आप सुन रहे थे और चले हैं खबर की तरफ। और भाई घड़ी का गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही है भाई, क्या बात है
1: भाई। मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं गजब सिटी मारे सैया पिछवारे, लहू के रंग से इसे लिया हूं मैं, और आवाज है पूर्णिमा जी का।

जी मित्रों, गजब सिटी मारे सही है पिछवाड़े, आप सुन रहे थे, बस 8 बजने वाला है, थोड़ा सा समय है, एक गीत है मेरे पास, वो बजा देता हूँ, और करतूत फिल्म का गीत है, बहुत प्यारा सा गीत है, जावेद अख्तर जी और सादना सरगम, जावेद अख्तर।

0: मित्रों, गीत के साथ ही ठीक 8 बजे हैं रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में और आप सुन रहे हैं संगीत सरगम कार्यक्रम। अब समय हुआ रानी क्रिशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया का। सुनते हैं इसको, बजा क्यों नहीं। अच्छा जी, इसका विज्ञापन तो नहीं आया, दूसरी जगह से बजाते हैं, आप चिंता ना करें। चलो यहां से बजाते हैं।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Yeah, Rani Creations ka ye 1.5 ghante ka program ya 15 minute ka program hai. Aap sabka tahe dil se swagat hai. Namaskar, sat sri akal aur salam hum bhet kar rahe hain. Aur mai mahina lag chuka hai doston. सर्दी का मौसम आ गया है, आहिस्ते आहिस्ते ठंड बढ़ने लगेगी। अभी तो बारिश हो रही जगह जगह पर, कहीं धूप निकली हुई है, कहीं आकाश पर घटा छाई हुई है, जैसे भी हो। और शॉपिंग के लिए तो वैसे बहुत बढ़िया दिन है, गर्मी नहीं है। गड्डी में बैठकर रानी क्रिएशन शॉप पे आ जाएं, पार्किंग की कोई चिंता नहीं है, शॉप के सामने ही पार्किंग है। और रास्ते पर भी आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। और याद रहे, शॉप खुलती है 10 बजे और बंद होती है 4 बजे। तो याद रहे, दिस इज 7 डे शॉप दैट ओपन्स एवरी डे। और यहाँ पर आपको हर प्रकार के कपड़े मिलेंगे, शादी वगैरह कर रहे हैं उसके वो भी कपड़े मिलेंगे। वाइड रेंज ऑफ साड़ीज विद मॉडर्न ब्लाउजेस ये मिलेंगे, रेडीमेड साड़ी भी मिलते हैं। और अगर आप साड़ी खरीदते हैं और आपको पहना नहीं आता है तो उसका प्लीट्स बना देंगे रानी क्रिएशंस, रेडीमेड कर देंगे। तो ये सुविधा उपलब्ध है, तो आप रानी क्रिएशन शॉप में किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसके साथ साथ मर्दों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, औरतों के कपड़े हैं, एक्सेसरीज बहुत सारे हैं। कोई शादी कर रहा है उसको टेबन चाहिए वो मिलेगा, स्टोल चाहिए दूल्हे को मिलेगा, दुल्हन को कुछ चाहिए दुपट्टा वगैरह ये सब मिलेंगे। और फिर ज्वेलरी भी मिलेगी मैचिंग, तो शादी का जोड़ा खरीदोगे तो फीमेल को जुड़ी तो ज्वेलरी मिल जाएगी। और फीमेल कपड़ों पर, औरतों के कपड़ों पर अप टू 50% डिस्काउंट सेल इस समय चल रहा है। तो याद रहे, शॉप 33 बालाकलाबा स्ट्रीट उलंगेबा। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए पहला गीत जो है यूपी वाला थुमका सोनू निगम जी से अदा कर रहे हैं।

0: जी मित्रों, फिल्म हीरो नंबर वन का गीत आप सुन रहे थे और रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आप सुन रहे हैं, जो हर शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक खुली रहती है और अदरवाइज ओपन डेली फ्रॉम 10 AM to 4 PM।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, हर प्रकार के कपड़े अगर पहली बार अभी आप एड सुन रहे हैं और कभी रानी क्रिएशन शो आए नहीं तो आ जाएं और आप खुश होंगे देखकर, वाइड रेंज ऑफ सब कुछ यहाँ पर मिलता है और एक्सेसरीज में सजने सजाने के लिए ज्वेलरी, बैंगल्स, बिंदी, एनीथिंग यू नीड इज अवेलेबल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपके लिए कपिल शर्मा का एक बिल्कुल नया फिल्म रिलीज हुआ है और इस शो में या ये मूवी में नीतू सिंह जी भी आई हैं और साथ में एस सादिया, और कपिल शर्मा का शो है और फिल्म का टाइटल बड़ा बढ़िया है, दादी की शादी। तो दादी की शादी से मैंने एक गीत चुना हूँ जिसे सुनिधि चौहान और सुनिधि निगम जी अदा कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।

जय मित्रों, दादी की शादी फिल्म का नाम है और कॉमेडी का है, कॉमेडी शो रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा और विल बी ए वेरी वेरी नाइस मूवी जैसा लग रहा मुझे, और ऐसे ही रहेगा, क्या बोलें आगे। तो थोड़ा समय है, मैं देखता हूँ। चलो भाई, कोई बात नहीं, ये बजाते हैं। और वादा रहा, इसे अभिजीत और अलका याग्निक जी अदा कर रहे हैं, इसे हम आपको सुनवाते हैं।

0: जय मित्रों, बस इसी के साथ ही हम पुरानी क्रिएशंस के साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया के समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यह सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। और रानी क्रिएशन शॉप में आपको सब कुछ मिलेगा। जस्ट कम इन, एंजॉय द डे और हैव लवली शॉपिंग एट रानी क्रिएशंस। तो चलो, यहाँ तो नहीं बजाए, कुछ कारण बस रुका हुआ है, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ से बजाते हैं इसको। इसी के साथ ही नमस्कार, सत श्री अकाल और अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, रेडी ब्रिजबान की घड़ी में इस समय 17 मिनट हुए हैं 8 बजकर, और संगीत सरगम को जारी करते हुए चलते हैं आगे बढ़ते हुए। बड़ा ही प्यारा सा ये वैसा गीत है, शाम के समय के गाना है। वैसे शाम को आप कर सकते हैं हंसी मजाक एक दूसरे के साथ। और छोटे सरकार पिक्चर से लिया हूं मैं इसे आपके लिए।
2: इश्क है वो मथुरा का पेड़ा।

जय मित्रों, लड़की पका पटाले बबुआ, बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। चलें एक विज्ञापन के साथ हम आगे बढ़ें, और आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, और मैं हूं परमानंद। चलें ये विज्ञापन सुनते हैं, फिर हम लौटेंगे।

ये मित्रों हंस मत पगले प्यार हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा गीत था ये, दो गाना जो अभी आप सुन रहे थे। और इसी के साथ ही बस पहुंच रहे हैं हम कहाँ भाई, कार्यक्रम के समाप्ति पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का जो सेगमेंट था आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले शनिवार को एक बार फिर। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजभानी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वाइब है और क्या प्लानिंग है आपकी आज की। मतलब छुट्टी है भाई, छुट्टी के दिन अगर सॉलिड प्लानिंग नहीं हुई तो फिर तो काम खराब है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं हुई ना तो उसके बाद फिर हम काउच पे ही रह जाते हैं, हम अपने घर पे ही कुछ अच्छा सा देखते रह जाते हैं और अपने घर पे ही कुछ खाते रह जाते हैं। मतलब वो जो बाहर की प्लानिंग होती है ना, ओके हम बीच जाएंगे, ओके यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग जो है ना वो ऐसे ही रह जाती है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो। सो प्लानिंग करना जरूरी है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हुआ जो पूरी पूरी प्लानिंग करते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, या मैं क्या सोच रही हूँ ना, घर पे ही रह लेते हैं, मजे से कुछ अच्छा सा देखेंगे, मजे से एकदम पूरा कोजी कोजी होके घर पे रहेंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे, ऑर्डर करेंगे और मजे से अपने दिन को जो है वो बिताएंगे। सो ऑफकोर्स प्लानिंग करेंगे तब तो बाहर जाएंगे, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं करेंगे फिर तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग के बावजूद भी लोग घर पे रह जाते हैं। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या प्लानिंग है, सॉलिड है या नहीं है, और अगर आप घर पे रह के चिल करना चाहते हो तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि आपकी आरजे निव्या भी बहुत बार करती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। जी हाँ, चलिए इसी के साथ, सैटरडे है भाई और सैटरडे की मॉर्निंग जो है वो बढ़िया होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मजेदार नींद, यू नो, मजेदार सपने, जब आप उठते हो तो आपको ये जो पंछियों की चहचहाने की आवाज बहुत अच्छी लगती है, आपको फूल बहुत अच्छे लगते हैं। आप बोलोगे ये सब चीजें तो हमें नॉर्मल टाइम पे भी अच्छी लगती हैं, आई मीन वीकेंड पे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा होता है। सो किसी ने बहुत ही अच्छा से कहा है कि अगर आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा होता है ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और कोई कुछ गड़बड़ भी कर रहा होता है ना आपको उससे भी शिकायत नहीं होती, लेकिन अगर अंदर से ही अच्छा फील ना हो रहा हो तो सब कुछ बुरा लगता है इस दुनिया में। सो या अच्छा अच्छा फील कीजिए और अच्छी अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी अच्छी चीजों खाइए और अच्छे से अपने वीकेंड को सेलिब्रेट कीजिए। और आपके वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए मैं यहां पर आ गई हूं। सबसे पहला जो गाना मैं प्ले करने वाली हूं, यानी कि 10वें नंबर का, वो है व्याकरवादो जी, और ये है नई मूवी है जवानी तो इश्क होना है। जी हाँ, है जवानी तो इश्क होना है, वरुण धवन की नई मूवी आ रही है और उसी का गाना है मिक्का सिंह की आवाज में और आशीष कौर की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, तो ब्याह करवा दो जी। मतलब कुछ लोगों को शादी करने में बड़ा मजा आता है, मतलब कुछ लोगों को इतनी पड़ी होती है शादी करने की कि पहले मतलब अभी थोड़ी ही उम्र हुई होती है और उनको होता है कि हमारी तो शादी करवा दो। इनफैक्ट मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी उम्र अभी इतनी हुई भी नहीं और उनको कहते हो वो कि हमारी शादी करवा दो और ब्याह करवा दो, मतलब शादी करवा दो। और कुछ लोगों को बिल्कुल ही शादी करने ही नहीं पड़ी है। और आपको पता है ये कहानी आजकल जेन ज़ी लोगों की और मिलेनियल्स की हो गई है। सो मिलेनियल्स जो है उनसे पहले की जनरेशन वाले भी शादी कर रहे हैं जल्दी, और उनसे बाद वाली जनरेशन यानी कि जेंजेस भी जल्दी शादी कर रहे हैं। लेकिन मिलेनियल्स पर पता नहीं कौन सा चक्कर चल रहा है, उनको कोई शादी करने की पड़ी नहीं हुई है। मतलब मैं देख रही हूं कि जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं सबसे ज्यादा कुआरे लोग मिलेनियल्स हैं। मतलब कि जो 91 के बाद और 96 यानी कि 91 से लेकर 97 तक की जो जनता है ना, वो सबसे कम इंटरेस्टेड है शादी

जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस मूवी की झलक देखी हो और इसमें कुछ अभी एक गाना जो है वो पिछले कल रिलीज किया है इसके मेकर्स ने, जी हाँ, और मैं बात कर रही हूँ भूत बंगला के बारे में। भूत बंगला के मेकर्स ने एक गाना रिलीज किया है और उस गाने की पूरी वाइब जो है वो भूल भुलैया से मिलती जुलती है। उसमें डांस कर रहे हैं अक्षय कुमार और साथ में उनके डांस कर रही हैं तब्बू, जी हाँ, आपको वो भी इसमें मिलने वाली हैं। सो ऑफ कोर्स यू कैन लिटरली गो फॉर दिस मूवी। दिस इज नॉट जस्ट अ कॉमेडी बट अ हॉरर कॉमेडी जो कि आपको डराएगी भी और आपको हंसाएगी भी। आपको डर भी लगेगा लेकिन आपको हंसी भी आएगी और इससे ज्यादा मजेदार और कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो जिसने भी ये हॉरर कॉमेडी वाला जोनर बनाया ना, बहुत ही मजेदार बनाया। सो तब्बू और अब अक्षय कुमार जो है वो डांस कर रहे होते हैं इसमें, और जब वो डांस कर रहे हैं वो एकदम पूरा राजा महाराजाओं वाला सीक्वेंस लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे भूल भुलैया में हो रहा था। एंड हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार जब ऐसी किसी मूवी का हिस्सा बनते हैं तो वो कितने गदर तरीके से फिर एकदम कामयाबी की तरफ को बढ़ते हैं। जी हाँ, मतलब हमें बहुत ज्यादा अच्छे से एंटरटेन करते हैं। भूल भुलैया इज स्टिल वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज। वेल ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भूल भुलैया 2, आई एम टॉकिंग अबाउट भूल भुलैया जो कि लिटरली हम सबकी फेवरेट है। सो या गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसमें वामिका गाबी उनके साथ आपको नजर आने वाली है और साथ में तब्बू भी मिलने वाली है और साथ में और बहुत ज्यादा मजेदार भूत प्रेत भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आई मीन इट्स अ हॉरर कॉमेडी, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट भूत इट्स some point of time in the movie। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि है 8th नंबर का गाना और ये है रूप दी रानी और ये है आयुष्मान खुराना की नई मूवी जो आ रही है। इसमें वामिका गाबी है, इसमें सारा अली खान है और इसमें है रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना इन तीनों अभिनेत्रियों के साथ एकदम डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, ट्रेलर में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए आप ये गाना सुनिए।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fijian India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यार, मैं बहुत वरीड हूं. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, एक चीज तो मुझे समझ आ गई है, अगर हमारी किस्मत में प्यार लिखा है तो हमें वो मिल ही जाएगा. अगर हमारी किस्मत में अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी लिखी है तो वो भी हमें मिल ही जाएगी. मतलब कुछ चीजों के लिए हमें हार्डवर्क करने की जरूरत होती है, पर कुछ चीजें हमारे लिए लिखी होती हैं, वो हमें मिलनी ही होती हैं. जी हाँ, और ये चीज मैं किस लिए कह रही हूँ? वेल, एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, जहां पर एक एल्डरली व्यक्ति, लाइक लिटरली उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ही मस्ट बी 92-93 या फिर इससे भी ज्यादा उम्र हो सकती है उनकी, और वो एक क्राउडेड सी जगह पर, मतलब पेरिस में एक क्राउडेड सी जगह पर जहां पर बहुत सारे लोग पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से साइट सीइंग कर रहे हैं, वहां पर वो सबको देख रहे हैं ताकि कोई उनकी फोटो ले सके. लेकिन जब वो फोटो लेने के लिए कहते हैं तो वो दिखाते हैं और इशारा करते हैं अपनी बीवी की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, जो कि व्हील चेयर पे होती है, और वो जिस व्यक्ति को ढूंढते हैं, मतलब जो व्यक्ति उन्हें मिलता है फोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि वो ढूंढ रहे होते हैं किसी को फोटो क्लिक करने के लिए, तो जब उन्हें वो व्यक्ति मिल जाता है तो वो उस व्यक्ति को बताते हैं कि वो पेरिस को अपनी बकेट लिस्ट से टिक कर रहे हैं और इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ यहां पर आए हुए हैं घूमने, और वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति उनकी पिक्चर क्लिक करे. जी हाँ, वो फटाफट उसके पास अपना फोन देते हैं और अपनी वाइफ के पास जाके खड़े हो जाते हैं. माइंड यू, उनकी वाइफ लिटरली व्हील चेयर पर है और वो इतने ज्यादा ओल्डी है, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब उनको देख के लग रहा है कि दे मस्ट बी 99, और इनफैक्ट अगर वो 100 के भी होंगे तो भी सेंस बनती है, क्योंकि अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो सच में बहुत ही ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग लग रहे हैं. बट यहां पर एक चीज मैंने देखी कि जब उनकी फोटो जब क्लिक करने के लिए वो व्यक्ति उन्हें कहता है स्माइल करने के लिए, वो दोनों इतनी प्यारी स्माइल करते हैं, और उस वीडियो को देखकर मेरा दिल भर आता है. मुझे इतना पता चल जाता है कि अगर हमारे जिंदगी में कोई ऐसा पार्टनर लिखा है जो कि सच में हमारे साथ हर एक चीज, खूबसूरत मोमेंट जीने के लिए तैयार है, तो वो डेफिनेटली होगा, वो कर पाएंगे हम, और मैं ही क्यों, मतलब कोई भी कर पाएगा, और उसमें एज का भी कोई वो नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी. एंड इट डजंट मैटर कि आप उस एज में हो, आप अपनी 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, इवन 80s या 90s में हो, इट डजंट मैटर. अगर आपके दिल में वो जिंदा दिली है ना, तो आप लिटरली अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने बकेट लिस्ट को चेक कर सकते हो, टिक कर सकते हो, और वो सारी चीजें कर सकते हो जो आपने कभी अपने पार्टनर के साथ करने की सोची थी. इट डजंट मैटर आप कौन सी एज के हो. सो या ये जिंदा दिली जो है वो मैंने उस कपल में देखी, और वो वीडियो इतनी ज्यादा हार्ट वार्मिंग है, मैं क्या कहूं. उन्होंने पेरिस को टिक कर दिया अपनी बकेट लिस्ट में, और अब वो पता नहीं कहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं. लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसा ही प्यार हम सब डिजर्व करते हैं, और हम सबको ऐसा ही प्यार हमारे पार्टनर के रूप में मिले. जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है, और ये है 7वें नंबर का गाना. और ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत है, और इसका नाम भी उतना ही प्यारा है. सुनिए आप, इस गाने का नाम है तुम पे ही प्यार आ गया, और ये है गिनी वेड सनी 2 का गाना.

जी दोस्तों, सोनू निगम और उनकी ये खूबसूरत सी आवाज, मतलब आवाज उनकी ऐसी है, इतनी मैजिकल है ना, लिटरली कुछ भी कहा जाए। हम लकी हैं कि इस जनरेशन में हमारे पास सोनू निगम है, लिटरली। मतलब उन्होंने वो वॉइड जो है वो कहीं ना कहीं भर दिया है जो वो लेजेंडरी सिंगर्स छोड़कर गए थे। जी हाँ, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जो गाना आपने अभी सुना, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तुम पे ही प्यार आ गया, ये गिनी वेड सनी 2 का गाना है और ये बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स हैं दोनों। मतलब ये अपनी ग्रेट एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आप जो एक्टर हैं उनको पहचानते हो लैला और मजनू से, और जो एक्ट्रेस है वो 12th फेल में आपको नजर आई थी। दोनों ही बहुत ही एक्टर है जैसे मैंने कहा, और इनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। गिनी वेड सनी 2 लगी हुई है थिएटर्स में, यू कैन लिटरली वॉच इट। इट्स अ गुड यू नो रोमांस ड्रामा फैमिली काइंड ऑफ मूवी, यू कैन लुक फॉर इट। आप इसका ट्रेलर देख सकते हो और फिर आप जा सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या करने वाले हो, आप देखने वाले हो या नहीं देखने वाले हो, बट इट कैन बी अ गुड वन टाइम वॉच, दैट्स फॉर श्योर। यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं, क्योंकि वो एक ऐसी मूवी का है जिसके लिए बज काफी बना हुआ था, क्योंकि इसके लिए साई पल्लवी को लाया गया था। नाउ साई पल्लवी ने अभी तक कोई भी बॉलीवुड का प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन ख्वाब देखूं, जी हाँ, एक दिन मूवी का ये गाना है। साई पल्लवी इसमें जुनैद खान के साथ आपको नजर आ रही हैं और ये अभी भी कुछ थिएटर्स में, सिलेक्टिव थिएटर्स में लगी हुई है। ऑल्दो ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट उतर गई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ सिलेक्टिव थिएटर्स में लगी हुई है। जुनैद खान जो कि आमिर खान के बेटे हैं और आमिर खान के प्रोडक्शन की ही ये मूवी है। नाउ द मूवी इज अबाउट ऑफकोर्स कि कैसे एक व्यक्ति जो किसी से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, वो उससे मिलना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो करना ईजी नहीं है। तो वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पे आप अपनी विश मांग सकते हो, और वो ऐसी ही विश मांगता है ताकि वो एक दिन के लिए उस लेडी को पूरी तरह अपना बना सके, वो उसके साथ रह सके, वो उसके साथ घूम सके और पूरी तरह से उसके साथ वो कपिलगिरी कर सके। सो या उसी के बारे में है ये कहानी। आई डोंट नो, पर मैं उतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी इस मूवी को लेकर, बट या इट कैन बी अ गुड वॉच इफ यू वॉन्ट टू, सो गो फॉर इट। यहां पर ये सुनते हैं ख्वाब देखो।

0: एक शाम जहां सुर और जज्बात सीधा दिल तक पहुंचेंगे। द मच अवेटेड कॉन्सर्ट रफी और मैं, ये वही रात है जिसका सभी को था बेसब्री से इंतजार। जावेद अली लाइव अपने बैंड के साथ लेकर आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज एंड सोलफुल परफॉर्मेंसेज।
1: एक दिन तेरी राहों में
0: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जावेद अली, जो इस रात को बना देंगे ट्रूली मैजिकल। कॉन्सर्ट होगा लाइव एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम, 16 रोवर स्ट्रीट, माउंट ग्रेविट, क्वींसलैंड 4122। लेजेंडरी मोहम्मद रफी साहब को एक खास ट्रिब्यूट और एनर्जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। अगर टिकट अभी तक नहीं ली है तो जल्दी लीजिए, क्योंकि शो है इसी सैटरडे 2 मई को ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम में। बाय योर टिकट्स नाउ एट www.staralliancentertainment.com। प्रेजेंटेड बाय लीडर्स इंस्टीट्यूट, पावर्ड बाय लीगल गुरु।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: जी दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। हम अपनी आधी लिस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और जो बची हुई आधी है उसकी तरफ जाने का वक्त हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट द मूवीज दैट यू कैन वॉच इन थिएटर्स दिस वीकेंड। जी हाँ, सो इस वीकेंड आप क्या क्या देख सकते हैं अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मूवी अगर कोई नहीं देखी वीकेंड पे तो क्या खाक वीकेंड सेलिब्रेट किया हमने। जी हाँ, तो सबसे पहले एक ऐसी मूवी जो कि लिटरली इसी वीकेंड रिलीज हुई है और उसके बारे में बात करना बनता है, और उसका नाम है राजा शिवाजी। राजा शिवाजी जो है वो अगेन एक ऐसी मूवी है जो हिस्ट्री को आपकी आंखों के सामने लेकर आएगी, और साथ में जो लेजेंडरी स्टार्स हैं जो आपको इसमें नजर आने वाले हैं, मतलब स्टारकास्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऑल्दो जो इसमें लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर वो कोई और होते तो मैं ज्यादा प्रेफर करती, बट ठीक है, अभी के लिए अगर हमें रितेश देशमुख एज राजा शिवाजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में वो नजर आने वाले हैं। जेनेलिया डिसूजा उनकी वाइफ इसमें होंगी, संजय दत्त भी है इसमें, अभिषेक बच्चन भी है इसमें, महेश मांजरेकर, विद्या बालन और तो और भाग्यश्री एंड फरदीन खान भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। सो आपको हिस्ट्री मिलने वाली है मराठाओं की, और कैसे ये सर्व होगी वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये मूवी देखोगे। सो या, इस हफ्ते की रिलीजेस में से ये सबसे ऊपर है क्योंकि ये इसी हफ्ते रिलीज हुई है एंड यू कैन वॉच इट। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं और क्या क्या लगा हुआ है थिएटर्स में। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली मूवी जो है इसके बाद मैं आपको बोलूंगी वो है भूत बंगला। ऑफकोर्स भूत बंगला जो है वो एक ऐसी मूवी है जो हॉरर कॉमेडी जॉनर की है। इसमें अक्षय कुमार हैं विद वामिका गाबी, और ये हॉरर कॉमेडी है तो ऑफकोर्स इसमें डर भी लगेगा, मजा भी आएगा जैसे मैंने कहा था, और ये बिल्कुल आपको भूल भुलैया 1 की फीलिंग जो है वो दिलाने वाली है। क्यों, इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूं तो फिर से नहीं कहूंगी, लेकिन या यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली एंड या यू कैन एंजॉय इट। जी इसी के साथ धुरंधर भी कुछ थिएटर्स में लगी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं धुरंधर यू कैन गो फॉर इट। जी हाँ, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन लेट मी नो कि आपको कैसी लगी। जी हाँ, इसी के साथ डेविल वेयर्स पराडा, जी हाँ डेविल वेयर्स पराडा भी लगी हुई है। चलिए ये तो हॉलीवुड रिलीजेस में से एक है, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि डेविल वेयर्स पराडा जो है, जो 1 है वो कितनी फेमस हो गई थी, कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी उसके बारे में मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। मेरिल स्ट्रीप से लेके एन हाथवे से लेके सबके सब इसमें आज भी याद किए जाते हैं, और उसी को फिर से बहुत ही टेस्टफुली सर्व किया गया, मतलब फैशन विद सटायर कैसे सर्व किया जाता है विद स्पूनफुल ऑफ ह्यूमर, वो आपको यहां पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ मूवीज है जो लगी हुई है, और काफी उनमें से मेरी रिकमेंडेशन भी रहेगी आपको, वो मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन पहले हम सुनते हैं 5वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

जी हाँ दोस्तों, अनुष्का के साथ बात हो रही है खूबसूरत गानों की और उन मूवीज की जो आप थिएटर्स में देख सकते हो। जो गाना भी आपने सुना वो था दर्शन रावल का खूबसूरत सा गाना साथिया। और अगेन दर्शन रावल यंग दिलों की धड़कन को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं और इसीलिए वो वैसे गाने लेकर आते हैं जो यंग दिलों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। सो या यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है दर्शन रावल एंड आई थिंक वी नो वाई। जी हाँ, इसी के साथ मूवीज के बारे में बात करते हैं। क्या आप और देख सकते थिएटर्स में? मैंने कहा था गिन्नी वेड सनी 2 आप देख सकते हैं थिएटर्स में। इट्स ऑफ कोर्स ये बॉलीवुड रिलीज है और आप इसे देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था लैला मजनू के एक्टर और साथ में 12th फेल की एक्ट्रेस मिलकर जब साथ में अपनी एक्टिंग का जादू चलाएंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये तो थी कुछ बॉलीवुड रिलीजेस और अब बात करते हैं पूरी तरह से हॉलीवुड रिलीज के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि डेविड वेयर्स प्राडा यानी कि डेविल वेयर्स प्राडा 2 हो चुकी है रिलीज। लोग भर भर कर थिएटर्स में पहुंच रहे हैं क्योंकि इट्स अ आइकॉनिक मूवी और उसका सेकंड पार्ट है। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं, फिर से उस मैजिक को अपनी आंखों में उतरता हुआ देखना चाहते हैं। इसी के साथ यहां पर एक मूवी जो कि साईफाई जॉनर की है लेकिन काफी अच्छा काम कर रही है, मैं बात कर रही हूं प्रोजेक्ट हेल मैरी। मूवी लिटरली इतनी कमाल है कि सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। रायन गॉसलिंग की जो बिगेस्ट ग्रॉसर्स है ना अभी तक उनमें से शामिल हो गई है, उस लिस्ट में शामिल होगी, ये तीसरे नंबर पर है इस वक्त ये। और मुझे लग रहा है जैसे ये चल रही है आगे और भी अच्छा काम करने वाली है। इसके बाद जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है दैट्स अ हॉरर मूवी ऑफ कोर्स। अगर आपको हॉरर मूवीज नहीं पसंद तो आप मत देखिएगा, बट अगर आप देख सकते हो और आपको पसंद है हॉरर मूवीज देखना, आपको पसंद है वो गॉथिक एक्सपीरियंस, आपको पसंद है वो गूजबम्स एकदम से आना और आपको लगना कि ओके जहां पर हम बैठे हैं वहां भी तो नहीं कोई कुछ है जी हाँ, आई नो ये एक्सपीरियंस जो है वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं बट सम पीपल लाइक्स इट जस्ट लाइक मी। सो या ये है ली कॉनिंस द ममी जो कि आप इसे देख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसे लगी। जब इसका ट्रेलर आया था तभी से मेरे गूजबम्स जो है आ गए थे मुझे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब इस मूवी को देखूं। सो इट्स अ गुड मूवी, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। सो ये तो कुछ मूवीज थी जो आप देख सकते हो अपने थिएटर्स में। इसी के साथ अगला गाना जो कि धुरंधर द रिवेंज का है वारी जामा, और धुरंधर द रिवेंज अभी भी इन गानों के साथ बनी हुई है और बनी होगी भाई, अभी धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स में लगी हुई है तो इस लिस्ट में तो उसके गाने होने चाहिए राइट। सो वारी जामा जो है वो धुरंधर द रिवेंज का गाना है और ये खूबसूरत है। जैस्मिन सैंडलेस, ज्योति नूरा और शाश्वत सचदेव ने इसे मिलकर बनाया है। लेट्स सी क्या है ये मैजिक, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत बात।

दोस्तों इसके साथ एक बॉस बोलता है अपने एम्प्लॉय को, यू यूज्ड योर ऑल वेकेशन डेज. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा. बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है, यू यूज्ड ऑल योर वेकेशन डेज. तो सामने से एम्प्लॉय बोलता है, नो प्रॉब्लम बॉस, आई यूज टॉम्स, बीन डूइंग हिज जॉब फॉर वीक एंड एनी वे, सो आई कैन यूज हिज लीव ऑल्सो, राइट? सो मतलब अगर आप किसी का काम कर सकते हो तो किसी की लीव भी तो इस्तेमाल कर सकते हो. अपनी लीव खत्म हो गई है तो किसी और का काम कर रहे थे तो उसकी लीव भी इस्तेमाल कर लो. और ये आइडिया आपको भी मैं दे रही हूं, अगर आपके बॉसेस कभी ऐसा बोले कि ओके ठीक है आपकी जो लीव है वो खत्म हो गई है, आपकी जो छुट्टियां हैं वो खत्म हो गई हैं, तो आप कह देना कि ओके ठीक है, डोंट वरी, हम दूसरों की लीव यूज कर लेंगे, दूसरों की छुट्टियां यूज कर लेंगे. क्योंकि जब आप हमसे दूसरों का काम भी करा लेते हो तब भी थोड़ी सोचते हो आप, तो हम दूसरों की छुट्टियां भी यूज कर लेंगे. जी हाँ, पर मैं एक बात तो पक्की कहना चाहती हूँ, जो भी एक क्रिएटिव आइडिया सोचता है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. आजकल तो मैंने देख लिया म्यूजियम्स में इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती है जितनी कि सोशल मीडिया पे होती है. सो अगली बार मुझे बताइएगा जरूर, जब आपके बॉसेस आपको कहें कि ओके तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बाहर आ जाओ, आप बोल देना काम दूसरों का करते हैं, छुट्टियां भी कर लेंगे दूसरों के इस्तेमाल. जी हाँ, यहां पर अगला गाना है कॉकटेल 2 मूवी का, और ये गाना जो है वो है अगेन जब तलक, और गाना जो है वो बहुत ही मजेदार है, अरिजीत सिंह का और प्रीतम का.

जी हाँ दोस्तों, तो कॉकटेल 2 का भी इंतजार आपको होना चाहिए, क्योंकि कॉकटेल जो है वो काफी सक्सेसफुल, काफी बड़ी मूवी है। और हमें आज भी याद है डियाना पेंटी, साथ में दीपिका पादुकोण का वो लेजेंडरी कैरेक्टर सैफ अली खान। जी हाँ, मतलब दीपिका पादुकोण ने कॉकटेल से प्रूव किया था कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मर हो सकती है। मतलब वो दिखने में ही सुंदर नहीं है, वो एक्टर भी बहुत अच्छी है, उन्होंने प्रूव ही कॉकटेल से किया था। और यहां पर आपको नई कास्ट में नजर आने वाले हैं शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड का मदाना। अब कौन किसके रोल में है, आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू, बट अभी धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसी के साथ 9वें नंबर का गाना सुनने का वक्त आ गया है, 9वें नहीं, दूसरे नंबर का गाना सुनने का वक्त आ गया है। आपको मैं छेड़ रही थी और मैं देख रही थी कि आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। जी हाँ, और गाने का नाम है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। सुनते हैं इसको और फिर सीधा नंबर 1 गाने पर जाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, मतलब कि हम अपने नंबर वन सॉन्ग पर पहुंच गए हैं। और नंबर वन सॉन्ग है जाइए सजना। जी हाँ, ये गाना थोड़ा सा सेंटी टोन की तरफ है, लेकिन ये गाना पूरी तरह से सेंस बनाता है अगर आपने धुरंधर द रिवेंज देखी है। आपको पता है, धुरंधर द रिवेंज देखने के बाद बहुत लोगों की सोच ही चेंज हो गई है, लिटरली। मतलब ये मूवी ने इतना इम्पैक्ट डाला है लोगों की सोच पर। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हुआ भी है। जिन लोगों को पता था उनके दिमाग में वो चीजें फ्रेश हो गई, और जिन लोगों को नहीं पता था उनके दिमाग में ये मूवी, इसके डायलॉग्स और इसके सीन्स काव हो गए, लिटरली। सो या, धुरंधर द रिवेंज इज डेफिनेटली वो मूवी में से एक है जो कि शेप अप करती है नैरेटिव को, और आगे आने वाले वक्त में मूवीज कैसे बनेगी और कैसा कॉन्टेंट लोग देखना चाहते हैं। सो या, नंबर वन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज, और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया गाना। गाने का नाम है जाइए सजना, इसे जैस्मिन सैंडलेस ने गाया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाया है। लेकिन इसमें एक लाइन है जो कि गाने से भी ज्यादा फेमस हो गई है, और इसे सतिंदर सरताज ने गाया है। सो गाना बहुत लेजेंडरी है, थोड़ा सैड टोन की तरफ है, लेकिन अगेन आप उन्हें मूवी देखे तो डेफिनेटली सेंस बनाएगा। दिस इज द नंबर वन सॉन्ग, सुनते हैं इसको और अब आपसे विदा लेते हैं। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलिए मुझसे मंडे को इवनिंग वाइब में।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? रेडियो ब्रिस्वानी को साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अब सुनिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM कहीं भी कभी भी। डाउनलोड करें रेडियो ब्रिस्वानी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और रहें कनेक्टेड अपने फेवरेट शोज से।
5: हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना जावेद अली और मैं आ रहा हूँ 2 मई को ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ हम याद करेंगे रफी साहब के गोल्डन सॉन्ग्स और साथ ही साथ सुनेंगे मेरे भी वापस से सॉन्ग्स। ये एक ऐसी शाम होगी जो सिर्फ म्यूजिक नहीं, इमोशंस लेकर आएगी और आपके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिक नाइट के लिए तैयार हो जाइए 2 मई को। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय लीडर्स इंस्टीट्यूट, सो बुक योर टिकट्स नाउ। टिकट्स आर अवेलेबल एट starlinesentertainment.com। सो सी यू देयर।
6: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्रीकेसीज को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: इस मदर्स डे को बनाएं और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।